0: salt. It's the most popular seasoning in the world. And India, one of its biggest producers. It's an industry built on the labor of the Agarias, who work in extreme conditions in the country's salt deserts. Workers believe the government ignores their pleas for help while traders keep most of the profits. But the salt industry's leading figures say ensuring the community's welfare is not their responsibility.
1: One
0: East investigates the hardships faced by the workers who supply the salt from India's deserts that ends up on our dinner tables. In India's western state of Gujarat, a vast salt flat desert stretches across almost 5,000 square kilometers. It's estimated that 30% of India's inland salt is harvested here by a community of salt workers known as the Agarias. The term comes from the Gujarati word agar, meaning salt.
2: Rudra, gutlena.
0: Kishan Bhai Maharaj is getting ready for another round of backbreaking work. He lives in the desert with his wife and two kids for 8 months every year when the seawater recedes after the monsoon. His 13-year-old son Rudra often helps him.
3: एकदम फिट हो जाएगा उसको हम छूटा पाड़ रहे हैं हर रोज ऐसा करना पड़ता है हर रोज दंतारा खींचना पड़ता है
0: किशन's family have toiled here for centuries. He joined the trade when he was just 8 years old.
3: हम 8-10 पीढ़ी से ये अगरिया परिवार है और हमारी जो अगरिया की जिंदगी है वो ऐसी है बदतर है कि पूरा का पूरा दिन रात लकड़ा कादेव कीचड़ में हाथ जटा के रहना पड़ता है अगर रात को सो गए तो भी हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा पाटा में पानी भरा हुआ होता है और वो कच्ची मिट्टी से बना होता है कब किस टाइम पे पवन आ जाता है और कब टूट जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है
0: एट द एंड ऑफ अ गुड सीजन किशन कैन होप टू मेक बिटवीन $350 to $500 फॉर हिज लेबर ही होप्स हिज सन विल हैव अ बेटर फ्यूचर
3: हमारी जिंदगी तो इसमें गई लेकिन उसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना है मेहनत मजदूरी कुछ भी करके
0: फॉर ऑल द हार्डशिप्स रुद्र सीज हिज फादर्स सैक्रिफाइसेस डिफरेंटली
4: पापा की मदद करता हूँ इसलिए अच्छा लगता है मेरे पापा भी मुझ पर गर्व है उन्होंने पढ़ा नहीं है फिर भी इतने पाटे का काम करके सर काम करके मुझे पढ़ाना चाहते हैं इसलिए
0: मेकिंग सॉल्ट बाय हैंड इज एग्जॉस्टिंग वर्क Agarias pump highly saline groundwater from deep beneath the desert floor into shallow pans. The water eventually evaporates.